0: तो कसर बाजो मुठ जोड़ा
1: जो नहले ले ले क्यों डर पारी माया भूखेरा माया को गाजो कसर बाजो मुठ

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस ओटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस अडगुरी।

0: থারু, কোকোনট, সোকোনট, ভিটা মিল্ক, বাটার ফ্রাইড, ক্রিম মিল্কি বাটার তথা ডাইজেস্টিভ হোল হুইট বিস্কিট।
1: হেরা হেরা হেরা ইয়ো হো হাম্রো চয়েস, কোকো ডাইজেস্টিভ র কুকিজ চাই নাইস
0: অডগুরি।
2: स्वदेश तथा विदेश का फाइव स्टार होटल रेस्टुरेंट तथा रिसोर्ट शत प्रतिशत रोजगारी को सुवर्ण अवसर।
3: नेपाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होटल तथा पर्यटन संबंधी तालिम में भर्ना खुल्यो।
2: राष्ट्रीय पर्यटन विकास तथा होटल व्यवस्थापन तालिम काठमाडौँ को 50% सहयोग में मात्र 40 जना का लागि अब घोराही बजार में रहेको होटल सुपर लज में होटल तथा पर्यटन संबंधी तालिम संचालन हुँदैछ। सीट र समय एकदमै सीमित छ। आजै सम्पर्क गरी मौका को फायदा उठाउनुहोस्।
3: तालिम दिइने विषयहरू
2: स्पेशल कुक तालिम अन्तर्गत इन्डियन, चाइनिज, कन्टिनेन्टल र इटालियन पिज्जा, स्पेशल सेफ तालिम, जापानिज सुशी तालिम, वेटर र टुरिस्ट गाइड आदि
3: हाम्रा विशेषताहरू।
2: स्वदेश तथा विदेशका फाइभ स्टार होटलहरूमा काम गर्नुभएका अनुभवी सेफ प्रशिक्षकबाट तालिम दिइने। एक्स्ट्रा प्र्याक्टिकल अथवा जब गर्न चाहेमा काठमाडौँ, पोखरा, दाङ र नेपालगंजका विभिन्न स्तरीय होटलहरूमा पठाइनेछ। जापान, दुबई र युरोपका विभिन्न देशहरूमा जान चाहेमा विश्वासिलो मेन पावरको व्यवस्था भएको। टाढाबाट आउनेहरूका लागि खाना र बस्नको व्यवस्था मिलाइनेछ। तालिम पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
3: थप जानकारीका लागि होटल सुपर लज शहीद गेट उमेश मार्ग खोराही दाङ, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9840170900 9840170900।
2: आयोजक राष्ट्रिय पर्यटन विकास तथा होटल व्यवस्थापन तालिम प्राइवेट लिमिटेड, काठमाडौँ, नेपाल।
4: मध्यपश्चिम चाङ च्याट यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नमस्कार, म झर्ना थापाको अहिले तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज।

राम राम सन्झेक पाँच बजे थारू भाषक मध्य पश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीको 23औं वार्षिक साधारण सभा तथा 13औं अधिवेशनमा देउखुरी क्षेत्रका आर्थिक तथा व्यावसायिक विकासका लागि निजी क्षेत्र औ स्थानीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक र लगभग जोड़ देगिल्बा। संघका अध्यक्ष कमलजंग सिंह ठकुरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारण सभा तथा अधिवेशनमा बरपौना लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्र सहकार्य गरिकन उद्यमशीलता विकासको क्षेत्रमा काम गर्तिर लगभग टरखल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको उपाध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले राज्यको राजस्व वृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रलक बटुती उद्योग व्यवसायीहन सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति राज्यले दिलाई पर्ना बटुवाराखल। साधारण सभामा महासंघका महासचिव हरि थापाले आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिराखल। प्रतिवेदनमा संघले उद्योगी व्यवसायको पक्षमा पैरवी तथा समन्वय बजार अनुगमन व्यावसायिक दक्षता वृद्धि तथा देउखुरीका समग्र विकासका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्नक उल्लेख बा। साधारण सभामा देउखुरीका समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माण कैकन अघारी बरह पर्नामा समेत जोड़ देगिल रह। राप्ती लद्देको पानी हन कृषि तथा पर्यटन से जोड़ना कोइलाबास भन्सार नाकाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ओ स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्न विषय हन प्राथमिकतामा धर पर्ना सहभागी हुनक काहिरलहिन। खोराई उपमहानगरपालिका वड़ा नम्बर 11 स्थित हरियाली टोलमा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न हो रहल। वातावरण स्वच्छ तथा हराभरा बनिना उद्देश्यका साथ आयोजना करगिल उक्त कार्यक्रम हरियाली टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष जग्गु प्रसाद आचार्यका अध्यक्षतामा सम्पन्न हुइलक हो। खोराई 13 वड़ा सदस्य कमला विक प्रमुख बरपौनामको रूपमा सहभागी हुइरलही। सरसफाई पश्चात कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ती प्रमुख अतिथि विकसे टोलहन सफा ओ सुन्दर धर सक्कु नागरिक भूमिका उस्तका महत्वपूर्ण हुन बटवारखले। उक्त सरसफाई अभियानमा सक्कु टोलवासी कनकको उत्साहजनक उपस्थिति रहल रह। सहभागी कनकसे टोल क्षेत्रभित्रको बाटो घाटो तथा सार्वजनिक स्थलका सरसफाई गरल रह। सरसफाई कार्यक्रमसे स्थानीय स्तरमा वातावरण सचेतना फैलाइकला सहयोग पुगिलक आयोजक जना राखल। संस्थाको उपाध्यक्ष बीरमाली ओलीको स्वागत मन्तव्यसे शुरू हुलो कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव प्रेमा पुनसे करल रहे। रसुवा बाढ़ीमा प्रभावित दाङको 11 जनाको उद्धार हो रहल। रसुवामा इलाका विनाशकारी बाढ़ीसे जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटसे उद्धार करगिलक व्यक्तिको नक्क अध्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्लक हो। उद्धार करगिलकमा 44 वर्षको शिव गिरी, 28 वर्षको देव प्रसाद चौधरी, 27 वर्षको उमेश चौधरी, 21 वर्षको सुनिता तामाङ, 46 वर्षको भानु निपाने, 47 वर्षको प्रदीप गिरी, 36 वर्षको महादेव रावत, 50 वर्षको अमृता गिरी, 29 वर्षका निमा शर्मा रावत, 14 वर्षका मनिला रावत, 19 वर्षका मनिषा रावत रहलबाट बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य आही जारी रहलको विवरण प्राप्त हुना क्रम चलती रहलबा। बाँकीका कोहलपुर नगरपालिकासे भोटेको सीमा इलाका भीषण बाढ़ीमा ज्यान गुबिलक नगरवासीको परिवार हन तत्काल 50,000 रूपियाँ राहत उपलब्ध गरिना हो रहल। शनिबार बैसलक नगरपालिकाको बैठकसे बाढ़ीमा मृत्यु हुलक नगरवासीको परिवार हन काजक्रिया खर्च बाबत जनही 50,000 रूपियाँ उपलब्ध गरिना निर्णय हुलक नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्य जानकारी दिएरखल। हालसम्म कोहलपुरको दुईजनाको बाढ़ीमा पर्कन मृत्यु हुलक नगरपालिका जना राखल। नगरपालिकाका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका 11 कविलाल थारू ओडाका महेश थारूको मृत्यु हुलक हो। कविलाल शव चितवनमा फेला परल रह। उहाँको शनिबार जो कोहलपुर स्थित श्रद्धा गृहमा अन्त्येष्टि समेत करगिलक नगर प्रमुख वीरबहादुर थापा बटुवा राखल। महेशको शव शनिबार रातकन कोहलपुर आनकन ओ अखि अन्तिम संस्कार कार्य हुइतिरलक जानकारी दिराखल। उहाँसे कोहलपुरका आही 11 जना सम्पर्क विहीन हुइलक विवरण आफन्त कनक्से नगरपालिका हन टिप्पैलक जानकारी दिराखल। कार्यपालिकाका बैठकसे बाढ़ी तथा विपदका कारण ज्यान गुमिना सक्कु जाहिनप्रति श्रद्धांजलि व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिराखल। उस्तको बाढ़ीका कारण बेपत्ता हुलक कोहलपुरवासी खोज तथा उद्धारका लागि टोली परिचालन गर्न निर्णय गरिगेलबा। वडा नम्बर 12
का वड़ा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाह को नेतृत्व में वड़ा नंबर दुई का वड़ा अध्यक्ष हरिसिंह कठायत पांच का वड़ा अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ ओ छ का वड़ा अध्यक्ष श्रीकृष्ण थारू नगर प्रहरी तथा विभक्तार नागरिक का परिवार का सदस्य सहित का टोली संबंधित क्षेत्र में पुक्कन खोज तथा उद्धार में समन्वय करना जनागिल बा ओ रसुवाको भोटेकोशी बाढ़ीमा ज्यान गुमेनाको संख्या 768 पुगलबा नेपाल प्रहरीका अनुसार आज दिन 2 बजेसम्म रसुवामा 13 जना धादिङमा 50 जना गोर्खामा 58 जना नुवाकोटमा 52 जना चितवनमा 264 जना तनहुँमा 37 जना नवलपरासी पूर्वमा 194 जना ओ नवलपरासी पश्चिममा 100 जनाको सप फेला परलबा घाइते तथा उद्धारका संख्या 2715 जना रहलबा हालसम्म 25 जना प्रहरी कर्मचारी सम्पर्क बिन्द रहलबाट काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार तथा डिस्चार्ज सुविधाका घाइतेको संख्या 160 रहलबा उठा आजुक थारू भाषा समाचार अत्रह काल सन्ज्याफे थारू भाषा समाचार सुन्न सक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षको सबको संग्रहसँग म शालिक राम चौधरी विदाई टु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।